एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे समझाते।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard,

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

रुसन दी कर रही सा, लेकिन शेर मैनू शराब ते याद आ गया। कुछ लोग शराब पींदे नहीं, लेकिन कुछ लोग शराब दियां बोतलां नू देख के की महसूस करदे ने, मैं अर्ज कर रही हां

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303

0: looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 FM ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग-अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं Sunrise Radio की नशरियात। Ladies and gentlemen, आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून एंड स्टिक अराउंड।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन

तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 6 दफ़ा 4 मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

बता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां पे जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

0: लड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: 24 hours a day, Sunrise Radio.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
5: We gonna do a song which you never heard before.
6: Assalamu alaikum. رحیم شاہ دا کراچینا، یوسف دا لندن، چواک او شاہ جہان دا جرمن، زکرہ غلی

भाई जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल करें 01274 30666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से, या फिर उनको हम मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर, ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर घुस गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274 30666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

राइट, आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी हैं, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: नफ्सेन ज़ायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

सियाणे कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाणे कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, या आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रब्ता हमसे रब्ता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मजीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है। तो मैं आपसे माजरा चाहता हूं, अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मजीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से जिंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

हज़रत जी कहते हैं कि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक ज़ुबान होती है, और वो ज़ुबान होती है कि किसी भी ज़ुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की ज़ुबान होती है। मोहब्बत की ज़ुबान वही होती है जो आपकी मादरी ज़ुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं। तो आपकी मादरी ज़ुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हो। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उनसे आर्ग्यूमेंट ना कर लें या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

जी वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर ही जाता है। हालांकि वक्त की रफ्तार एक ही होती है, जब आप खुश होते हैं तो बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं होते हैं, अगर आप परेशान हैं, बेजार हैं या आपको किसी चीज़ में नुकसान पहुंच चुका है, तो वही वक्त आपके लिए जो एक सेकंड है वो एक घंटा बन जाता है, एक घंटा एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा हर पल हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है, आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्का नतीला है सिर्फ दो पौंडना। कान सलाने ना, एक पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 4883।

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव, लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने

और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फायदा उठा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ, वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊँगा और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा, उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है, वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

तो लीजिए हम आपको ये देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदली तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास से मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Sunrise and music.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

राइट ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एख्तिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

कि ऐसी चीज का नाम जो ना बैठ देवे ना खलोन देवे ते ना सौन देवे जागे ता तड़पे हर वेले यार नू मिलदी तांग एक ऐसी मंजिल जो जिंदगी दे उस पार है एक अलड़ जी मुटियार जिसनू इस इश्क ने अजे हुने ही डंगया वो बैठी अपनी सैया नू।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord You can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: you the hottest sounds. Let's go.
1: On Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam namaste. Salam namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा
5: हुआ
6: हम शरीफ क्या हुए
7: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश
7: देखो मैं हूँ कहाँ
0: आ रहा हूँ पलट के

0: अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शुक्रिया, खुशामदीद, वेलकम टू सुन रहे रेडियो 103.2 FM। आपका होस्ट दोस्त यहाँ पे हाजिर है। मेरा नंबर आम ही है टिल 11 PM शाम, और आप सबके नाम रंगे महफिल का प्रोग्राम है। एंड टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, एज यू नो टुडे इज वेंसडे इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। एंड टुडे इज द फर्स्ट ऑफ जुलाई 2026। द वेदर हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल मौसम, लवली टू बी मौसम है। आज कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, वॉट इज योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग? यू आर लिसनिंग सुन रेडियो 100.6 FM, 103.2 FM क्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, DAB प्लस ब्रैडफोर्ड, कीथली, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। And not forgetting, very very soon we will be launching on Derby. And not forgetting, you can download the Sunready app on Google Play Store and Apple Play Store. And not forgetting www.sunriseradio.fm and also www.sunrise.radio. और लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं, दमक रही हैं। 01274306666 पे फिर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद है। आप सबको हमारी तरफ से मुबारक मुबारक मुबारक, क्योंकि इंग्लैंड हैज वॉन टुडे, और क्या कहने जी, 2-1, ओए माय गॉड, ओए होए होए, आज तो पार्टी पार्टी हो रही है जी, क्या कहने। एनीवे, आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू हिट ऑफ द आवर। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट ट्यून। और लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं, दमक रही हैं। 01274306666 पे
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: राइट, दैट वाज द हिट ऑफ द आवर। आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लाइनें यहाँ पे चमक रही हैं, दमक रही हैं, और आज हम भी खुश हैं और सब दुनिया खुश है, क्योंकि इंग्लैंड हैज वॉन टुडे 2-1। और क्या कहने जी, क्या कहने, और यहाँ पे पार्टी तो बनती है ना। एनी वे, यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 13 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. सब हमें याद करें, अपनी अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और लगाने वाले हैं, और आपका भी शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और आई हैड सच लवली लवली कॉलर्स जिन्होंने मुझे फ़ोन कर चुके, अपने अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद आपके लिए गाने होंगे और फर्दर सबके लिए गाने होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कीप इट लॉक्ड विद द सुंदर रेडियो 103.2 FM।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट?
3: व्हेदर यू नीड अ 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Sunrise and music.
5: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise, the definitely number one hit music station across the nation. Or Boba Shukriya, aapka bhi aapne apni apni hazri lagane. Sabse pehle call Sonia ji, Boba Shukriya, aapka bhi. Thank you very much. You have called in, aur bahut acha laga ki aap hamara saath hain. Thank you very much. Aapka bhi. Then we had a lovely caller from Wajid bhai. Unhone yaad kiya, Boba Shukriya, aapka bhi. Abdul Qayyum sahab Rising aur se aapne bhi hame yaad kiya, hazri lagayi aur sab doston ko salam pesh karein. Kidhar bhai hain? Hamare paapi jaane Sumitra ji hain, all the way Milton Keynes se hain, Manchester se hain. Atika sahab hain. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी एंट्री की है, बहुत बहुत शुक्रिया. चौधरी फिरियाज साहब हैं पाकिस्तान से, हमारा याद कर हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. शिवे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ हैं. रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये मैं गीत पेश करने जा रहा हूँ आप दोस्तों के, थोड़ी देर के बाद दोस्तों का भी नाम लूँगा. वाजिद भाई आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप दोस्तों आपका भी और आपके दोस्तों के भी नाम करूँगा थोड़ी देर के बाद. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ सोनी जी आपके लिए होगा और आपकी पूरी टीम के लिए. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और रेखा जी ये गीत आपके लिए होगा. आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. बहुत खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून. आपने इस गीत को एंजॉय करेंगे. बहुत अच्छा लगा कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. इफ यू ड्राइविंग ड्राइव विद केयर एंड इफ यू आउट एंड अबाउट मेक श्योर आपने स्टिक अराउंड विद सनराइज रेडियो 103.2 FM. और यही गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. और हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने हमें याद कर रहे हैं. शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और शिबरेज भाई आपके लिए, आपके दोस्तों के नाम में होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे. बहुत ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून. एंजॉय.

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, और आपने एंजॉय किया। और मशहूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए गीत आने वाला है आपके लिए, और महबूब साहब आपके लिए होगा, और आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम भी यहाँ पे स्टूडियो में खुशी मना रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड हैज़ वन टुडे 2-1, और क्या कहने जी, क्या कहने, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या कहेंगे, और यहाँ पे पार्टी हो रही है और यहाँ पे हंगामा हो रहा है और हम खुशी मना रहे हैं, क्या कहने, क्या कहने। Anyway, this is the track I will be playing for you, Mashroor Sahab, aapke liye gaya, Abdul Qayyum Sahab, Farazing Gaur se aapke liye geet hoga, aur ye gana aapke liye gaya, mujhe ummeed hai yakeen ki aap enjoy karenge, bahut khoobsurat geet hai, aapke liye bhi hoga, I hope you're gonna enjoy this wonderful tune, aur yahan pe khamosh listener, aur not forgetting all the chori chori, chupke chupke listeners, ye gana aapke liye bhi hoga, aur Rekha ji, ye geet aapke liye bhi hoga, enjoy the track.

of that was a Madam Noor Jaan ki khubsurat madbari awaz kya kehne khubsurat awaz waqai isme koi shak nahi hai and I hope Allah taala mishan ko shadabad rakhe Allah taala unke liye kya kahenge unke liye duaen karte hain unke liye aur ek aur khubsurat dekhoge khubsurat gana aane wala hai thodi der ke baad hoga definitely aapke liye bhi hoga aur mujhe umeed hai yakeen hai ki aapke liye hoga aur yahan pe acha laga ki aap hamare saath dene ali bhai bahut bahut shukriya aap hi party mein na rahe hain khushi mein na rahe hain aur kya kehne ji kya kehne आपका भी शुक्रगुजार हूं ममनून हूं आपका कि आप हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी एनीवे यहां पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद आपके लिए गीत होगा बहुत खूबसूरत गीत होगा वंडरफुल ट्रैक होगा जो आजकल बड़ा ही चल रहा है बड़ा ही मदबरा आवाज है उनकी भी खूबसूरत आवाज है और बड़ी ही प्यारी आवाज है और हमारे शहीद एहसान साहब आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे लेस्टर में लंदन में बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी थैंक यू वेरी मच आप हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू वेरी मच ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली व्हेयरएवर यू आर नदीम मंसूर साहब आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आपका भी थैंक यू वेरी और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक क्या है कि 31 सेकंड की वाह जी क्या कहने जी क्या कहने यानी 31 सेकंड के बाद हम दोबारा हम कलाम होंगे आपके साथ और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Sunrise and music.
3: Alright, welcome back. Moving on to another beautiful track which I'm going to be playing for Shah Jal Mishra. Bahut bahut shukriya aapka bhi aapne hamara saath dene. Thank you very much. Aapne bhi flash kiya hai. Ye geet main aapke liye pesh karunga. Mujhe umeed hai yakeen ki aap enjoy karenge. Wajid bhai aapke liye aur aapki puri team ke liye mujhe umeed aur yakeen hai ki aap hi enjoy karenge. Wonderful track for all those wonderful wonderful family friends colleagues. If you get married one of these days aap sabko bhi mubarakhan der ki mubarakhan aur ye jo geet hai जो बहुत ही मशहूर मकबूल गीत है आप सबके लिए होगा एंड डैनिश हैप्पी बर्थडे टू यू एज़ वेल एंड यस यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे एंड हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से विशिंग यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड यस यू हैव इनवाइटेड मी एज़ वेल और बहुत बहुत शुक्रिया देखते हैं क्या होता है और ये गीत आपके लिए भी होगा इट्स अ वंडरफुल ट्यून आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून और सोनी जी ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम ये गीत आपके लिए भी होगा आपकी फैमिली के लिए होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे बहुत खूबसूरत गीत है सिमी जी ये गीत आपके लिए होगा आई होप यू कैन एंजॉय द ट्रैक एज वेल आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा किदन भाई हमारे पापी जन स्मित्रा जी ये गीत आपके लिए भी होगा एंजॉय द ट्रैक

राइट एंड दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी फ़रियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया, आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ देने, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान से आपने हमें याद किया और आपने सब दोस्तों जो भी आपके बहन भाई हैं, साथी दोस्त अहबाब अजीज़ हैं, उनको आप सलाम पेश कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका भी। आप आए और बाहर आ गए और ये आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और थोड़ी देर के बाद हम कलाम होंगे दोबारा आपके साथ भी और बहुत अच्छा लगेगा, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपने हसन साहब दोस्तों को सलाम पेश किया है तो आपने ये भी बताया कि आपकी जो मिसिज़ हैं, जो हमारी हमारी पापी जान हैं, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई हैं, तो उनके लिए आपने हसन दुआ करनी है और मेरे भाई हम हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद ज़िंदगी दे और जल्दी जल्दी घर आ जाए माशाल्लाह खुशबाश। और हम दुआ करते हैं कि उनके लिए जो हमारी पापी जान हॉस्पिटल में बीमार हैं तो आपने खसूसन उनके लिए दुआ करनी है और अल्लाह पाक हमेशा उनको खुश रखे, शादाबाद रखे और सेहतमंद वाली ज़िंदगी दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और चौधरी फ़रियाज़ साहब आप ने हमने आपके साथ मिले भाई, हम दुआ गो हैं आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी दुआ गो, क्योंकि वो भी हमारी माशाल्लाह हमारे भाभी जान हैं, हमारी बहना हैं माशाल्लाह, हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं और हम सबको रिक्वेस्ट भी करते हैं जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त अहबाब अज़ीज़ हैं, प्रोग्राम सुन रहे और उनके लिए खसूसन दुआ करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।

Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप फैब्रिक का भी, और हमें अच्छा लगा. Moving on to another beautiful track, श्रीमी जी ये आपके लिए गीत होगा, और गिदन भाई हमारे पापी अश्मित्रा जी आपके लिए भी होगा, चौधरी फरियाज साहब ये आपके लिए होगा, और अतिका साहब ये गीत आपके लिए भी होगा, और वाजिद भाई ये गीत आपके लिए भी होगा, और यही गीत मैं पेश करूँगा, शाह जलमी साहब ये गीत आपके लिए, मसरूर साहब ये गीत आपके लिए, और महबूब साहब ये गीत आपके लिए, अब्दुल कयूम साहब ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन आप इन्जॉय करेंगे, और अली भाई ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन आप इंजॉय करेंगे, डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन आप इंजॉय करेंगे, और यही गीत मैं पेश करूँगा, और यास्मीन ये गीत आपके लिए होगा, और सोनी जी ये गीत आपके लिए भी होगा, आपकी फैमिली के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन आप इंजॉय करेंगे. वंडरफुल ट्यून फॉर ऑल दोज वंडरफुल कॉलर्स, और Danish, this is for you. I hope you're going to enjoy this wonderful tune. Enjoy.

right, and that was definitely one of my favorite tune, और आपने enjoy किया definitely, और हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत ही अच्छा लगा यास्मीन, आपने दोबारा मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करने का, उजला अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी गानों को पसंद किए, प्रोग्राम को पसंद किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करें। शमी जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये गीत आपके लिए गया और आपकी फैमिली के लिए गया, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे, और यही गीत मैं पेश करूँगा। सोनी जी ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम, ये गीत आपके लिए गया, आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, और ये वो गीत है जो पेश करने जा रहा हूँ। दिस ट्रैक विल टेक मी टू द 9 o'clock न्यूज़, एंड देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। डेफिनेटली इट्स अ सेलिब्रेशन टुडे, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे बिकॉज़ इंग्लैंड हैज वन टुडे 2-1, और काफ़ी यहाँ पर रौनक हो रही है और पार्टी हो रही है, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।

0: All right, welcome back, listener. You're listening to Sunday Radio on 100.6 FM on 103.2 FM across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Shipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है. बहुत शुक्रिया आप सबका भी. एंड वेरी वेरी सून वी गोना बी लॉन्चिंग ऑन डाबी और आपका भी शुक्रगुजार हूं ममनून हूं. एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सुनरी ऐप ऑन एप्पल प्ले स्टोर ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड नॉट फॉरगेटिंग ऑन www.sunriseradio.fm that is www.sunrise.radio. That is all about on Sunrise Radio. You can get so many ways to connect with Sunrise Radio. Anyway, Boba Shukri, aap sabka bhi jinne ne doston ne mujhe phone kar chuka aur kar chuke aur jinne ne phone kar chuka tha aur last hour mein between hours 8 and 9 aur unhone phone kiya aur zarafzai kiye duaen diye. Dr. Malik sahab, Boba Shukri, aapka bhi thank you very much ke aapne hame itni duaen diye, itni khoobsurat duaen diye, itne khoobsurat tohfe diye hame. Aur Boba Shukri, aapka bhi maa ji बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच और जिन्होंने हमें साथ दिया बिटवीन आवर्स ऑफ 8 एंड 9. आई एम थैंक यू वेरी मच कि आपने हौसला अफजाई की है. कैप मी बिजी बिजी बिजी बिटवीन आवर्स ऑफ 8 एंड 9. बहुत शुक्रिया आप सबका भी. एंड आई हैड प्लेड अ ट्रैक फॉर यू एंड इफ आई मिस एनीबॉडी आई डू अपोलोजाइज. ठीक है और यहां पे हमने क्या करना है कि हिट ऑफ द आवर पेश करना है. देन वी विल गोना गो ऑन टू द लाइव कॉल का सिलसिला होगा यहां पे. बहुत शुक्रिया आपका भी और डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए. कीप इट लॉक्ड.
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.
3: Mujhe kya ho

0: Right, that was the hit of the hour आपने enjoy किया, definitely, and that was a very very lively track आपने enjoy किया, definitely I did, and you know what, thank you very much आप सबका भी जो हमें याद कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि time check करना है, which is very very important, और उससे पहले यहाँ पर हमने ये पेश किया.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 11 minutes past 9 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the power is Khan. और मुझे कह रहे हैं कि टाइम चेक हो गए हैं और आपने आर्ट ब्रेक करनी है. मैंने कहा क्यों ना, हमने आपका सुनना है और सर आंखों पर मेरे भाई क्या हाल है, और बहुत आज मेरे साथ मस्ती नहीं करनी है, जैसे आपने करते रहे ना पिछले दो प्रोग्रामों में, आपने मेरे साथ मस्ती करते रहे, तो आज मेरे साथ की मस्ती वगैरह नहीं करनी है और आपने मेरा साथ देना है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पे हमने क्या करना है कि छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद वी गोना गो ऑन टू द लाइव कॉल का सिलसिला होगा. तो आर्ट ब्रेक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी आर्ट ब्रेक है, 31 सेकंड्स, कीप इट लॉक्ड.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3535. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर्स, और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा आपसे लेकर 11 बजे तक, और यहाँ पे हमारा साथ हैं टीकर साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसी थी बीते? ठीक है, ठीक है आपकी?
1: सब अल्लाह का शुक्र है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी
1: तो सबसे पहले तो सबको सलाम करते हैं, सारी जितनी हमारी लिस्ट है
0: जी जी,
1: सब जितने भी आने वाले हैं। और सबसे पहले हम बताएंगे कि आपने जो सॉन्ग लगाए थे
0: जी,
1: आज भी कमाल के सॉन्ग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: इतने कमाल के थे कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम कोई
0: फरमाइश करें।
1: इतने प्यारे सॉन्ग थे और बहुत खूबसूरत सॉन्ग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: आप जब भी आते हैं और ढूंढ ढूंढ के लाते हैं सॉन्ग, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग है
0: जी।
1: तो इस मौसम के लिहाज से भी, हर तरह के लिहाज से आप उसको चुन चुन के लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका
0: जी।
1: तो ये सब आपके आने की वजह से ये खूबसूरत महफिल सजती है
0: जी।
1: तो हमेशा ऐसे ही होगा, अल्लाह करे
0: जी।
1: तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं
0: जी,
1: और अपनी अपनी हाजिरी भी लगवाते हैं
0: जी।
1: तो उनका सुनने को जो चीजें मिलती हैं बहुत ही
0: कमाल की है, कमाल की, कमाल की, सबकी कमाल की,
1: कमाल की। तो कमाल के तो सॉन्ग थे ये, नायाब लोग,
0: नायाब लोग हैं माशाल्लाह। ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, नायाब लोग थे और सब नायाब हैं माशाल्लाह। अपनी अपनी जगह पे खूबसूरत हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं।
1: सब अपने अपना उनका मकाम है, बहुत खूबसूरत चीजें सुनने को मिलती हैं। ये सब ये आपकी जब महफिल सजती है उसकी वजह से सब होता है
0: जी।
1: तो अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो हमेशा,
0: आमीन।
1: तो हम सबसे पहले आप बता रहे थे चौधरी फरियाद साहब का
0: जी। हाँ, मेरी जो पापी जान है वो हॉस्पिटल में है, तो उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है, और चौधरी फरियाद साहब ने हमने उन्हें इत्तला दी है, और उनके लिए खुसूसी दुआ करने का, अल्लाह रहम करे, बेहतर हो जाए जी
1: इंशाल्लाह ताला। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं अपने भाई के साथ
0: जी।
1: चौधरी फरियाद जब आते हैं तो बहुत रौनक
0: लगती है, कुछ शक नहीं, कुछ शक नहीं।
1: अल्लाह करे उनकी घर की रौनकें भी
0: बहाल हो जाए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो वो बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, सबकी दुआएं उनके साथ हैं
0: जी।
1: तो इंशाल्लाह वो फिक्र ना करें, हम सब उनकी लिए दुआ करेंगे
0: इंशाल्लाह, आमीन माशाल्लाह।
1: तो हमारी सुमित्रा बहन और गिदर भाई हैं, वो भी उनके मैसेज का बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: वो आएंगे, लास्ट टाइम उन्होंने बहुत खूबसूरत
0: गीत गुनगुनाया, वरी ना दोनों ने कमाल कर दी, दोनों ने
1: बहुत अच्छा लगा। और जब आते हैं तो खूब रौनक लगती है
0: जी।
1: तो मुझे उम्मीद है कि वो आज भी आएंगे।
0: वो कह रहे थे, उन्होंने फोन किया, वो कह रहे थे हम आएंगे, आज धमाका होगा, आज खुशी वैसे भी मना रहे, इंग्लैंड में हो चुके हैं तो उसके लिए खुशी खुशी है जी।
1: इंग्लैंड विन हो गया सबको
0: जी, आपको भी और सबको जी।
1: तो रेखा जी हैं, नशीन जी हैं, शाहपरी हैं, जुलेखा जी हैं, सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल जी हैं
0: जी,
1: और चौधरी फिराज साहब हैं। इंशाल्लाह उनका वेट करेंगे, वो आएंगे जरूर
0: जी। वो हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह जी,
1: बहुत अच्छा है कि वो हमारे साथ हैं
0: जी।
1: नदीम मंसूर साहब हैं, लास्ट टाइम उनकी गैर हाजिरी थी,
0: और उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि उनकी फैमिली में थोड़ा मसला हो गया, तो उनके लिए भी दुआ करनी है आपने, और हमने भी सब ने दुआ करनी है जी।
1: बहुत सारी दुआएं सबके लिए, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे,
0: आमीन।
1: पापा जी हैं
0: जी,
1: पापा जी की बहुत गैर हाजिरियाँ हैं
0: जी।
1: शकील जी हैं
0: जी,
1: शकील जी जब आते हैं तो बहुत ही एक मुनफरद किस्म का शायरी,
0: इसमें कुछ शक नहीं, कुछ शक है ही नहीं है,
1: बहुत खूबसूरत चीजें उनके पास हैं जो वो को हम सबको सुनने को मिलती हैं, उनका बहुत शुक्रिया। सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, उनकी शायरी, उनके सॉन्ग बहुत खूबसूरत,
0: बहुत खूबसूरत, वाकई कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं।
1: वो मुदस्सर कियानी साहब हैं, उनकी गैर हाजिरियाँ हैं
0: जी,
1: उनका भी इंतजार है। वाजिद भाई हैं
0: जी,
1: साजिद पहलवान साहब हैं, सजाद साहब हैं, फिरमान साहब हैं
0: जी,
1: महबूब इलाही साहब हैं, उनकी बहुत गैर हाजिरी,
0: बहुत गैर हाजिरी, अल्लाह खैर के, पता नहीं पाकिस्तान चले गए कहाँ चले गए, अल्लाह खैर का जी,
1: क्योंकि वो बिल्कुल उनकी कोई आवाज नहीं है, हो सकता है वो सुन रहे हो तो आए और अपनी आवाज भी सुनाए, खूबसूरत शायरी
0: जी।
1: राना नवीस साहब हैं, आजकल तो बहुत सारे लोगों की गैर हाजिरी हैं।
0: हाँ पता नहीं, वो काफी थोड़े बिजी हो गए और ऐसे कोई
1: गर्मी बहुत थी
0: जी,
1: हो सकता है कि कभी कभी नासाज होती है तबीयत
0: जी,
1: तो अल्लाह करे सब ठीक ठाक हो, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे,
0: आमीन।
1: चौधरी रुखसार साहब हैं वो भी गैर हाजिर हैं
0: जी,
1: रामजर हुसैन साहब हैं वो भी गैर हाजिर हैं,
0: नहीं आएंगे गैर, वो आएंगे इंशाल्लाह, राय साहब आएंगे इंशाल्लाह, राय साहब आप पुकारेंगे तो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, वो आएंगे इंशाल्लाह।
1: हम तो सबको पुकारते हैं क्योंकि सब भी खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत उनके हिस्सा डालते हैं
0: जी,
1: तो इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। सुहेल साहब हैं
0: जी,
1: और सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
1: तो अब शायरी है सबके लिए
0: जी जी।

0: बाबन हमने बस इसको रहोशदाब लिखला लिख डाला जवाबन हमने बस इसको रहो शादाब लिख डाला खिलौना जान रखा था जिन्होंने तख्ते शाही को न जाने क्यों उसने इन्हें नायाब लिख डाला कहाँ मुमकिन था लिख पाते कलम से दास्ताने गम कहाँ मुमकिन था लिख पाते कलम से दास्ताने गम मगर करतास पर अशकों ने एक सलाब लिख डाला हमें थी शेर कहने की सहूलत इसलिए दिखाए जो हमें तुमने वो एक एक ख्वाब लिख डाला किया जब उसकी यादों ने हमें बेताब लिख डाला
1: वाह जी वाह क्या कहने
0: अव्वल अव्वल की दोस्ती है अभी एक गजल है कि हो रही है अभी
1: वाह क्या कहने
0: मैं भी शहर वफा में नावर्द वो भी रुक रुक के चल रही है अभी
1: वाह जी वाह क्या कहने
0: मैं भी ऐसा कहाँ का जोर शनास वो भी लगता है सोचती है अभी
1: वाह क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब
0: दिल की बाफर्दगी है अपनी जगह फिर भी कुछ एहतियात सी है अभी
1: वाह क्या कहने बहुत खूब
0: गर्चे पहला सा अजतनाब नहीं फिर भी कम कम सुपुर्दगी है अभी
1: वाह
0: कैसा मौसम है कुछ नहीं खिलता कैसा मौसम है कुछ नहीं खिलता बूंदा बांदी भी धूप भी है अभी बूंदा बांदी भी धूप भी है अभी खुद कलामी में कब ये नशा था जिस तरह रूबरू कोई है अभी
1: वाह वाह क्या कहने
0: खुद कलामी में कब ये नशा था जिस तरह रूबरू कोई है अभी कुर्बतें लाख खूबसूरत हों दूरियों में भी दिलकशी है अभी
1: वाह जी वाह क्या कहने
0: फसले गुल में बहार पहला गुलाब फसले गुल में बहार पहला गुलाब
1: वाह
0: किसकी जुल्फों में टांगती है अभी मुद्दतें हो गई हैं मगर वो जो दीवानगी की थी अभी मुद्दतें हो गई मगर वो जो दीवानगी की थी है अभी अव्वल अव्वल की दोस्ती है अभी एक गजल है कि हो रही है अभी
1: वाह जी वाह क्या कहने
0: तमाम साल महकते गुलाब इसके हैं ये आंख मेरी सही इसके इसमें ख्वाब उसके हैं
1: वाह वाह क्या कहने
0: तमाम साल महकते गुलाब उसके हैं ये आंख मेरी सही इसमें ख्वाब उसके हैं जो मेरे जिसमें बरसी उसकी बारिश थी जो मेरी रूह में उतरे अजाब उसके हैं
1: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब
0: जो मेरे नाम के आगे लिखी हुई है सजा
1: वाह
0: ये सारे लफ्ज अदद और हिसाब उसके हैं
1: वाह वाह क्या कहने क्या कहने
0: उसके अक्स हैं लर्जा दिमाग पर्दों पर जो जम गई हैं नजर में सराब उसके हैं
1: वाह
0: उसको जेब हैं जो नाम सबसे आला है उसको जेब हैं जो नाम सबसे आला है
1: वाह
0: जो बेहतरीन है सबसे खताब उसके हैं
1: वाह वाह क्या कहने
0: जो बेहतरीन है सबसे खताब उसके हैं
1: वाह
0: कबूल आम है बस निस्बतें उसकी सो हम भी चाहने वाले जनाब उसके हैं
1: बहुत खूब
0: कबूल आम है बस निस्बतें उसकी
1: वाह
0: सो हम भी चाहने वाले जनाब उसके हैं
1: वाह क्या कहने
0: तमाम साल महकते गुलाब उसके हैं ये आंख मेरी सही इसमें ख्वाब उसके हैं
1: वाह
0: साथ किसी का छूट गया दिल बैठ गया
1: वाह क्या कहने
0: प्यार का मंदिर टूट गया दिल बैठ गया
1: क्या कहने बहुत खूब
0: नींदों को ताबीर की हसरत मार गई आंख में सपना फूट गया दिल बैठ गया
1: वाह
0: याद तेरी रह जाती थी सो रह गई है हाथ से दामन छूट गया दिल बैठ गया
1: बहुत खूब बहुत खूब
0: शाम भी मुझसे मोड़ के चेहरा दूर गई और ये दिन भी रूठ गया दिल बैठ गया इतने टुकड़े कोई समेटेगा
1: वाह
0: इतने टुक

0: टुकड़े कोई समेटेगा आखिर, देख मैं कितना टूट गया दिल बैठ गया, साथ किसी का छूट गया दिल बैठ गया।
1: बहुत खूब।
0: कब पलट कर वो तुझे दीदाए तर देखेंगे, जाने वाले तो फक्त अपना सफर देखेंगे। इससे आगे का हर एक फैसला तुझ पर छोड़ा, जाते जाते तुझे हम एक नजर देखेंगे।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
0: तेरे कदमों से लिपटी हुई मट्टी की कसम, जब तक आंखें हैं तेरी राह गुजर देखेंगे।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: रत जगे सिर्फ तेरे साथ मजा देते हैं।
1: वाह जी वाह।
0: तू ना होगा तो कहां दो शहर देखेंगे। अब करम हो के सितम हो, हम तो यहीं के ठहरे।
1: वाह।
0: वो नहीं हम जो किसी और का दर देखेंगे।
1: वाह।
0: कब पलट कर वो तुझे दीदा तर देखेंगे।
1: वाह जी वाह।
0: जाने वाले तो फक्त अपना सफर देखेंगे। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जितिन भाई फ़ोन कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिन दोस्तों का आपका नाम ले रहे थे कि आप वो नहीं आ रहे, तो वो कह रहे हैं कि हम जो ना लाइनें नहीं मिल रही हैं तो इस वजह से नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने हौसला अफजाई की। और आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सबकी जी। लाइनें मिल जाए
1: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और राजा अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमारा साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। और पापा जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप ही गिला किए कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया पापा शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि हमने कोशिश करते हैं और लाइन ही मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्ला खैर। आपका भी थैंक यू वेरी मच। और हमें अच्छा लगा मदरसा कियानी साहब, आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ है चौधरी फरियाद साहब, हमारा साथ है हमारे किदन भाई, हमारे पापी जान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो बाकी फ़ोन को ट्राई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, फर्दन फर्दन आपके सबका हाल हेलो हाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2. और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब के। और वहाँ से हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त चौधरी फरियाद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी वेलकम, जी आनो खुश आमदीद, सोने दे मनमोहन, क्या हाल चाल, ठीक है, ठीक है आपकी चौधरी साहब? चौधरी साहब आपकी आवाज़ चली गई है, अल्लाह खैर ही करे। और वहाँ से कह रहे थे कि आप होल्ड करें। और यहाँ पे चौधरी साहब आपकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: जी वालेकुम सलाम।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने कहा कुछ शायद उधर से आवाज़ आ रही थी कि आप होल्ड करें, तो मैंने कहा मैं होल्ड कर लेता हूँ। आपने कुछ स्क्रीन रखी हुई वहाँ पे, क्या हाल है? और वहाँ से वो बोल रहे थे कि जो आपने नंबर वो ओवर है, आप वहाँ पे होल्ड करें। और मैंने कहा वाह जी वाह, क्या कहने, ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है पाकिस्तान में, वाह जी वाह, क्या कहने।
4: मैं
1: दोबारा चेक किया, कंप्यूटर भी वो सारा ठीक ठाक जबरदस्त हो गया है, और वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे भाई। चलो अभी आवाज़ आ रही है, जबरदस्त हो गया है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका सर।
4: हूँ मैं कितने दूर हूँ?
1: तो हाँ आवा के दोष में है ना, पूरी दुनिया सुनने में है, आवा के दोष में ऑनलाइन है। अच्छा। हवा के दोष में।
4: चलो मैं सोचा, मैं यकीन करो मैं सोच रहा था मैं चरोकना
1: आप होल्ड करें, जो मतलूबा नंबर है ना वो आप होल्ड करें। तो मैंने कहा देखो चौधरी साहब ने वहाँ पे कुछ सक्रिय रखी हुई है माशाल्लाह, और क्या कहने, वाह वाह क्या कहने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप जी जी बिल्कुल करो।
4: सब तो पहले आतिशा बाजी ने, नशीन जी ने
1: जी,
4: सिमी जी ने, उन्होंने अम्मा जी ने, गाना बाजी ने, उमे कुलसुम जी ने
1: जी,
4: सीमा जी ने, शाहपरी जी, सारा जी
1: जी,
4: पादी साहिबा गिदड़ भाई फरजाना जी ने, साइमा जी ने, सब आरजू ने, रुखसाना जी और सोनिया जी,
1: जी
4: सब मेरा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
4: उम्मीद है कि
1: बिलीव करो जहां जहां भी आवाज पहुंचनी ना तो सारे की पता लग गया और दुआ करने पे
4: तकरीबन 22 दिन हो गए ना
1: जी
4: मारे घर वाले इतो गए सन तो फिर कार गए उन्होंने रस्ते जाने सेहत खराब हो गई
1: अल्लाह
4: एयरपोर्ट अपने और मोहतरम आमर भाई ने महबूब लाई साहब ने नसर साहब ने अजीत सलीम साहब ने चौधरी मनीर सैन चक्की वाले ने शकील साहब ने हीरा भाई वाजिद भाई ने अयूब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई ने अब्दुल किशोर भाई ने और नवीद राणा साहब ने जनाब तारक बार साहब ने चौधरी मुजफ्फर साहब ने
1: जी
4: और जनाब चौधरी आसिफ रियासत साहब ने और जनाब डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने चौधरी रफ्तार साहब ने एम खान साहब ने
1: जी
4: नदीम मंसूर साहब ने राजा अफकार साहब ने राजा जुल्कमैन साहब चौधरी मुनीर जैन
1: जी
4: मेरा भरा और जफर अली जो साहब महमूद साहब राजा शोएब साहब
1: जी
4: और भी जितने जाहिर भाई जितने भी सारे संगीत साथी
1: जी
4: सब आके मेरा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
4: बिस्मिल्लाह चाहिए शुरू करा
1: जी जी अर्शद
4: लेकिन इन्हें कि आजज हाँ मौला करम कर दे
1: माशाल्लाह सुभान अल्लाह
4: आजज हाँ मैं मौला करम कर दे तेन छोड़ के होर जहाँ किथे किसने खोल के दसा दर्द अपने जाके किस्मत और जाके किस्मत अजमा किथे
1: वाह जी वाह क्या कहने
4: तेरे दर्द का सवाली ते हाँ मंगता आलत मन दी होर तना किथे नजरे करम दा तालब है माजद और तेरा दर छड़ चोली फलां किथे
1: वाह जी वाह क्या कहने
4: बिस्मिल्लाह करा फिर लिखने ने के मेरे मौला तेरी शान वक्री वक्रे कम ने तेरे जहान अंदर
1: वाह
4: तेरा होर ना कोई शरीक रब्बा बेनियाज है कौन आ मकान अंदर
1: वाह जी वाह क्या कहने
4: टुटे हुए दिल तेरी क्याम गाने टुटे हुए दिल तेरी क्याम गाने नारे वसदा है जिनी आसमान अंदर माजद बन जाए शुक्र गुजार बंदा एहो आरज़ू है मेरे ईमान अंदर
1: वाह जी वाह माशाल्लाह
4: मजाज में रंगी गुल हो गए चिराग उम्मीदा वाले गुल हो गए चिराग उम्मीदा वाले ना कोई सुख ना चैन ना प्यार रहा
1: वाह
4: ना ही रही बजमे वसल वसार वाले ना कलब विच तेरा इंतजार रहा
1: वाह जी वाह क्या कहने
4: तेरी शोक जवानी में चल गई है तेरे हिजर विच मैं बेकरार रहा मेरे लबा ते रहा इजहार माजद तेरे लबा उते सजा इनकार रहा
1: वाह वाह क्या कहने क्या कहने
4: अच्छा फिर किधर गिया कसमा ते वादे तेरे किधर गिया कसमा ते वादे तेरे क्यों भूल गए ओ दिलदार सानू
1: वाह
4: तेरे बिन गुजारसा याद किस तरह जख्म इजर दे गए ओ हजार सानू
1: वाह जी वाह क्या कहने
4: आपे फुल्लां दी सेज दे सो गए
1: वाह
4: आपे फुल्लां दी सेज दे सो गए ओ बख्शी तुसा अनायत वार सानू ओ रखा वसल दी माजद उम्मीद की में रखा वसल दी माजद उम्मीद की में यादी जद दीती है मार सानू
1: वाह वाह क्या कहने
4: जनाब सारे दोस्त अली हमजा ने शागिर्द भी ने शायर ने बड़ी खूबसूरत शायरी
1: जी जी
4: दर्दा भरी आखने ने के सब कुछ वारिया जिस यार उतो मासा ना यार आया वफादारियां सारियां रातियां रोंदा सोंदा पलट सरकार आया
1: वाह जी वाह क्या कहने
4: तरले पांदा रहा हमेश में ते तरले पांदा रहा हमेश में ते गम वंडन ना कोई गम खार आया आस जिस ते सदा कबीर रखी बेवफा निकल दिलदार आया
1: वाह जी वाह क्या कहने
4: अखिया फिर इतबार जे करा ते करा किस ते इतबार जे करा ते करा किस ते करदा मैं उड़ीक बेकार आया असे बाद भी आया ते की आया देन गैर नू वो देन दीदार आया गई टुट वसाल दी आस सारी गई टुट वसाल दी आस सारी मैं गरीब नो जिंदा हो मार आया जिस दी खातर रुल गया मैं कबीर सागर बेवफा और निकल दिलदार आया
1: हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब
4: अखिया फिर सदै लारियां विच उस चाल दिता सदै लारियां विच उस चाल दिता इसे मेरे विच सदै इगरान आया ਆਸ ਵਸਲ ਆਸ ਵਸਲ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਸ ਵਸਲ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ
4: ਜੇ ਕੈਦ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੁਮਾਨ ਆਇਆ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਬੀਰ ਛੋੜੀ ਬੇਵਫਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਜਾਨਾਨ ਆਇਆ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
4: ਕਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਬੇਕਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਕਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦਰ ਦਾਨ ਆਇਆ
1: ਵਾਜੀ ਬਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ
4: ਖੂਬ ਵਫਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਤੋੜੇ ਝੂਠਾ ਹਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮਾਨ ਜਿਸ ਚ ਸਦਾ ਕਬੀਰ ਰੱਖੇ ਬੇਵਫਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਜਾਨਾਨ ਆਇਆ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਵਾਹ
4: ਅਖਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਖਾ ਗਮ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਗਮਗੀਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ ਪਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਆਇਆ
1: ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ
4: ਧੋਖੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸਿਆ ਨਿਕਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਰੀਨ ਆਇਆ ਜਾਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਬੇਵਫਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਉਸੀਨ ਆਇਆ
1: ਆਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
4: ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਸਮ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਸਮ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
4: ਤੇਰੀ ਜੀਦ ਬਾਜੂ ਰਿਹਾ ਤੜਪਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਦ ਬਾਜੂ ਰਿਹਾ ਤੜਪਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾਮੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
1: ਵਾਹ ਚੋਰੀ ਫਰਮਾਨ ਗਿਆ
4: ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਸਦ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਦੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
1: ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ
4: ਤੇਰੀ ਜੀਤ ਬਾਜੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਪਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਯਾਰ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਮੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦਮੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
1: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ
4: ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋੜ ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋੜ ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਗ ਵੈਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛੀ ਕਲਮ ਕਰ ਚੈਨ ਕਰਾਰ ਕਲਬੀ ਔਰ ਤਨ ਦਾ ਲਹੂ ਸਕਾਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
1: ਆਇਆ
4: ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆ ਜਲਦੀ ਤਰਲਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਰੋ ਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਟਾਇਆ ਤੂੰ
1: ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਖਰੀ
4: ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਰੋ ਰੋ ਦਿੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਕਾਸਦ ਰੋ ਰੋ ਦਿੱਤੇ ਪੈਗਾਮ ਕਾਸਦ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਿਨ ਰਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਿਨ ਰਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
1: ਵਾਹ ਚੋਰੀ
4: ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਕੇ ਖੂਨ ਚਲਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਕੇ ਖੂਨ ਚਲਦੀ ਆਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
1: ਆਇਆ
4: ਸਮਝ ਆਣ ਸਮਝ ਆਕਰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਕਰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
1: ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਏਬ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸ਼ੁਏਬ ਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੈਸੇ ਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਔਰ ਨਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਵਿਦ ਹੈਲ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
4: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
1: ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
4: ਲਾਇਆ
1: ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ
4: ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ
1: ਹੈ ਜੀ
4: ਬੁਕਰੀ ਨਾ ਸਕਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ
1: ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਖੇਰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ
4: ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ
1: ਚਾਹ ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ
4: ਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਭਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਸ਼ੀਨ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਿਰ ਸਲਾਮ
1: ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋ ਕਹਿ ਲੈ ਚਲੋ ਤੱਕ ਨੇ ਨਾ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ
4: ਠੀਕ
1: ਹੈ ਜਨਾਬ ਰੱਬ
4: ਰੱਖਾ
1: ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਯੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਮੋਹਤਰਮ اور بہت بہت شکریہ ان کا بھی ہمیں اچھا لگا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے محترم ہمارے دل عزیز ہمارے اپنے اور یہ ہیں ہمارے گدن بھائی ہیں ویلکم جی این او خوش آمدید ست بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضور میں تو فرسٹ میں اے ون آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے انگلینڈ ہیز ون ٹوڈے ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی ہے
5: آپ کو بہت مبارک بھائی جان
1: اور خیر مبارک آپ کو بھی مبارک ہم اس میں شامل ہیں اور ہم بھی عشاء ڈالا ہے اور ہم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں آپ کے
5: तो अभी चौधरी फरियाद भाई आया, क्या उसके वाइफ बीमार है?
1: उनकी मिक्की जो हमारी भाभी जाने हैं वो हॉस्पिटल में, तो उनके लिए खुशी दुआ करने के वो बीमार है।
5: चलो दुआ जरूर करेंगे।
1: जी जी,
5: तो ठीक हो जाएगी
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
5: तो सब हमारी अतिका जी भी आ गई, उसने भी अच्छी अच्छी बात सुना के चली गई
1: जी,
5: लेकिन वो गाना आज रात गाती नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसको।
1: अच्छा चलो देखते हैं, उनको कहे ना कि नेक्स्ट प्रोग्राम में गाना गाए जी,
5: लगता है रियाज नहीं किया उसने। अच्छा चलो देखते हैं
1: जी।
5: तो सबसे पहले हमारा शकील भाई बनली वाला
1: जी,
5: हमारा भाई है
1: जी,
5: हमारा मोहम्मद हनीफ भाई है
1: जी,
5: साजिद भाई है, हमारा वाजिद भाई है
1: जी,
5: चौधरी फरियाद भाई है, सज्जाद पहलवान है, पहलवान को भी पहलवान ही बता रहे हो, तो आता ही नहीं कभी।
1: परवान साहब वो कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि लाइन बिजी है तो क्या करूं। वो उन्होंने कहा मुझे, आज भी उन्होंने फोन किया और थोड़ी देर पहले,
5: लाइन बिजी नहीं वो खुद बिजी है,
1: वो फुल बिजी है। चलो उसको हम कहेंगे वो आए आए आए।
5: अच्छा तो इसके बाद इकबाल भाई है, हमारा पापा सतीश है, डॉक्टर मलिक साहब है, वो भी आता नहीं, डॉक्टर साहब भी नहीं आता अभी, पता नहीं क्या बिजी हो गया वो,
1: डॉक्टर साहब बिजी बिजी बिजी लाइफ बिजी।
5: मोहम्मद रफी भाई है
1: जी,
5: हमारा नवाब परवेज खान भाई है,
1: क्या कहने,
5: हमारी बहना समीना खान है
1: जी,
5: अतिका जी है, आशिया जी है, समीना जी है, सिमी जी है, रेखा जी, हमीदा जी, सितारा जी, मिस्टर मिसेस पटेल, और जो जो सुन रहे हैं सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
5: तो ये मैं उसके गाना में पेश करता हूँ
1: जी जी,
5: रफी साहब का है।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने,
5: क्या कि मेरे को है फीवर है ना।
1: कोई कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, आराम से
5: तो कोशिश करता हूँ।
1: जी जी जी,
5: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है,
1: वाह,
5: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है,
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल,
5: अभी जाऊं लगता है तेरी महफिल है, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी,
1: बहुत खूब
5: बस कर रही।

0: तेरी हर खुशी कहाँ सिले, जहाँ भी जाए लगता है तेरी महफिल
1: है।
0: तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, ये आसमां ये बादल ये रास्ते ये हवा ये आसमां।

0: जगाती काने से कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से ये जिंदगी ये सफर तू सफर की मंजिल है यहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है
1: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कमाल का दिया कमाल कमाल का दिया ब्यूटिफुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये मेरा फेवरेट गीत है और वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक इज ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे भाभी जान क्योंकि मैंने अजान पेश करनी है यहाँ पे और बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया गिदिन भाई यू मेड माई इवनिंग टुडे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने कहीं भी जाना नहीं थोड़ा होल्ड करें बहुत बहुत शुक्रिया
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: classic hit of the hour, brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
2: राइट वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुनना रेडियो 103.2 एफएम में बॉबी शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारी पापी जान है, सुमित्रा जी हैं ऑल द वे फ्रॉम हैमिल्टन कीन से हैं। बॉबी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: वालेकुम सलाम भैया।
2: बाबी जान, हाउ आर यू और डिड यू हैव एंजॉयड द फुटबॉल टुडे? आपने एंजॉय किया होगा?
3: बहुत मजा
2: आया, बहुत मजा आया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी। जी जी,
3: सबको मैं मुबारकबाद।
2: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चीज? बहुत अच्छा लगा। हाफ एन आवर जो तो था ब्रेक के बाद, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। जी जी,
3: चलो मैं सब कुछ सलाम बोल दो।
2: जी जी, गो अहेड।
3: स्पेशल सलाम जो मेरा शकील भाई बनने वाला
2: जी,
3: जो हमको अच्छी शायरी करता ना,
2: बड़ी खूबसूरत शायरी करते, कमाल की शायरी करते, ब्यूटीफुल
3: पहचान बहुत होती है,
2: बड़ी बड़ी बड़ी उनके पास नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज,
3: नॉलेज
2: बहुत नॉलेज है। जी,
3: शकील भैया को मेरा सलाम।
2: जी,
3: जावेद भैया को, फिर मोहम्मद हनीफ भैया है, वो साजिद कैफिल से आता था, वो साजिद ने
2: जी जी, वो साजिद वो उन्होंने पिछले हफ्ते फोन किया था, तो वो एंड पर फोन किया था, वो टाइम खत्म हो गया था प्रोग्राम का। बड़ा अच्छा गाना गुनगुनाता है, बड़ा अच्छा गुनगुनाता है, वो आता रहता है, वो काम करता है ना, आपको पता है। जी,
3: बहुत अच्छा गाना,
2: बहुत ही खूबसूरत गाना गुनगुनाता है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। जी जी जी, बड़ा ही खूबसूरत गाना गुनगुनाता है, आएगा इंशाल्लाह। जी
3: जी, वाइफ जो बीमार है,
2: जी
3: फिक्र नहीं करो, हमेशा ठीक हो जाएगी
2: इंशाल्लाह।
3: इकबाल भैया है, पापा शफीक भैया है, हमारा मोहम्मद रफी भैया है, वो भी आएगा
2: जी,
3: अच्छा गाना सुनेगा
2: डेफिनेटली जी।
3: हमारा आशिया जी है, हमारी अनियतिका जी, अतिका जी भाई, उसको स्पेशल सलाम।
2: वालेकुम सलाम।
3: कलीना है, टिम्मी जी है, रेखा जी, हमीदा जी, सितारे जी, मिस्टर मिस पटेल
2: जी,
3: आपको अपने आपकी फैमिली को स्पेशल सलाम भैया।
2: वालेकुम सलाम।
3: तो ये गाना बुक खोले नहीं तो ये फिल्म गाइड का मिला है।
2: हाँ हाँ, क्या कहने, बहुत खूबसूरत गीत, गीत बड़ा प्यारा गीत है, बड़ा प्यारा गीत है, वाह।
3: कोशिश करूँगी।
2: जी जी जी, गो अहेड।

0: वाह
1: चंद
0: वाह,
1: तेरे मेरे सपने एक रंग में, ओ जहां दिले जाए
0: वाह
1: रहे हम चंग
0: वाह,
1: है, तेरे तेरे सपने।

0: बाहर जाने पर तब ही फुल खिलना, मेरी जीवन का तेरी मेरी सपने हम एक रंग में।
1: वाह क्या कहने,
0: तेरी दुख अब मेरे,
1: वाह
0: तेरे सुख अब तेरे,
1: बहुत खूब।

0: बहुत खूब बहुत खूब। वाह क्या कहने, बहुत खूब। वाह क्या कहने क्या कहने, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही एंजॉय किया हमने, बड़ा ही प्यारा गीत था, वेरी वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल गाना आपने चुना है और बड़ा ही अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मिस्टर मिस्टी पटेल आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपने इनके लिए गाना गुनगुनाया और बड़ा ही खूबसूरत गाना, बड़ा अच्छा लगा, बहुत
1: खुश।
0: अच्छा चलो चलो, कोई आपने होल्ड करना है तो होल्ड कर सकती हैं आप, कोई मसला नहीं है।
1: मैं अभी जा सकती हूँ?
0: हाँ अभी तो टाइम कम है, दो तीन मिनट हैं अभी इसमें,
1: कोशिश करूंगी।
0: हाँ आपने थोड़ा होल्ड कर लें और नेक्स्ट आवर में कर लें, ठीक है ना, या दोबारा फोन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है तो फिर आराम से करना है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे पापी जान, और पापी जान ने बहुत ही खूबसूरत गीत गुनगुनाया, वेरी नाइस ब्यूटीफुल ट्रैक, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही नायाब गीत था और बड़ा ही प्यारा गीत है, और हमें अच्छा लगा। गिदन भाई ने भी कमाल किया है और हमारे पापी जाने भी कमाल किया है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही नायाब गीत था, बड़ा ही अच्छा लगा। क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है इस आवर का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा मैं किसी को लेके जाऊँ और उनको कहूँ कि जल्दी करें। हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, एम खान जी भी हमारा साथ दे रहे हैं, सुमित्रा जी भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और पलवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद पलवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हमें अच्छा लगा कि आप भी हमारा साथ हैं। एफ रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी क्योंकि आप हमारा साथ दे रहे हैं। आई एम गिविंग लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है हमें आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं कॉल ले जाऊँगा तो टाइम जो है ना वो मसला हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि देर इज़ ओनली अबाउट वन और टू मिनट्स लेफ्ट एंड देन इट डजंट लुक नाइस, इट डजंट लुक गुड एज़ वेल, वो मेरी आदत भी नहीं है, मैं किसी को लेके जाऊँ उनको कहूँ कि यार अभी ब्रेक आ रही है, न्यूज़ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड इट्स नॉट मी एनी वे। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑन 100.6 एफएम, 103.2 एफएम क्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, अकिंटन, मिंटन कीन में, और नॉट फॉरगेटिंग वेरी वेरी सून इज गोना बी लॉन्चिंग इन डर्बी वेरी वेरी सून, एंड नॉट फॉरगेटिंग यू कैन डाउनलोड द सुनर रेडियो ऐप ऑन एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर, एंड नॉट फॉरगेटिंग ऑल्सो www.sunriseradio.fm थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो जो यहाँ पे हो रहा है, एंड दैट इज www.sunrise.radio, एंड दैट इज ऑल अबाउट, एंड थैंक यू, और वंस अगेन हम मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपको पता है कि फुटबॉल हैज़ बीन वन, और फुटबॉल इंशाल्लाह जल, और क्या कहने की आज बड़ा ही खूबसूरत मैच हुआ है, और देयर वाज विनिंग वाज 2-1, एंड दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल दोस फुटबॉलर्स लवर्स एंड ऑल एवरीबॉडी आउट देयर, एंड दिस इज गोना बी द न्यूज़ ब्रेक।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 10. England are into the last 16 of the World Cup and they have their captain to thank. Harry Kane scored twice as they fought back from a goal down to beat DR Congo 2-1 in Atlanta. Kane says it was a big effort from his team.
4: That's where I'm most proud of the boys and myself as well, just to keep the belief, keep getting the ball into the right areas, and you know, one of us will have our hero moment, and thankfully for me it was today.
3: They'll play co-host Mexico in the next round in the early hours of Monday morning. Algerian national Riyad Bouchaker has been found guilty of attempting to murder three children during a knife attack in Dublin in 2023. Rioting broke out in the Irish capital in the wake of the stabbing. A five-year-old girl was left with life-limiting severe disabilities following the assault. Our Ireland correspondent Stephen Murphy was at the court.
5: The care worker that was in charge that the court heard heroically intervened, along with a number of bypassers as well, Leanne Byrne. She was placed in an induced coma as a result of the severe injuries that she suffered at the hands of Riyad Bouchaker that day.
3: The Tories have accused Sir Keir Starmer of leaving a mess for Andy Burnham, who, if he becomes Prime Minister, will have to find the cash to pay for defence plans. The ex-Greater Manchester Mayor is the only known candidate so far for the Labour leadership. The family of a three-year-old seriously injured at a zoo in Cambridgeshire have thanked staff who rescued their son from a crocodile enclosure. Police say the boy faces a long road to recovery. Victor Willis, lead singer of Village People, has died at the age of 74. In an online statement, the band says he had a short but aggressive illness. Willis was the policeman in their hit YMCA and also dressed as a naval officer in other songs. And the Halifax brand is being scrapped. Owner Lloyds is converting all the building society's accounts into its name. They say customers don't have to do anything. It'll end 173 years of the West Yorkshire firm appearing on the High Street. That's the latest. I'm AJ Walsh.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहां पे हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, time in the studio is 5 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. Yahan pe hamara saath de rahe hamare mauzin mehman hain, hamare M Khan ji hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujhse pehle ek khawateen aur Faryaz sahab ki yaadasht aur unke kalam ki daad deta hoon ke Faryaz sahab to हमेशा ही नंबर दे जाते हैं, लेकिन इन दोनों खवातीन और फरियाद साहब की याददाश्त में मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन दोनों की याददाश्त इतनी तेज कर दे क़यामत तक इनका कोई सानी पैदा न हो.
0: आमीन, माशाल्लाह.
2: वो हूँ कि शाम को जब तो रोटी जब खाता हूँ एक घंटे के बाद अगर मुझे कोई तो मुझे नाम भी याद. मैंने ईद पढ़ाई.
0: अच्छा
2: वहाँ बार क्यों, मैं एक बुजुर्ग आदमी था, काफी उम्र थी उसकी.
0: जी जी.
2: निकला था मुझे कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा इब्ने मरियम तक और ईसा इब्ने मरियम से लेकर आखिरी नबी जो पैदा हुए, जितने लोगों के खुतबे पढ़े वो सब दुनिया ही पढ़े हैं.
0: जी.
2: मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसा ही किया. मैंने कहा कि मैं आया तो मुझे कहने लगे ये खुतबा दोनों खुतबे आपने पढ़ने हैं.
0: अच्छा.
2: तो ये देर हो गई तो ये बात है. बहरहाल ये साथियों की मोहब्बत है, अगर कोई जितना लंबा पड़ता मुझे इसमें कोई इतराज
0: नहीं. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप अपना सुनाएं. जी जी सुनाएं. जी जी जी.
2: तो भला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं
0: जी जी
2: मैं सुनाता हूँ हमेशा.
0: जी जी.
2: है जिंदा फकत वहादत इफकार से मिलत,
0: वाह
2: वहादत हो फना
0: जी
2: जिससे तो इल्हाम भी इल्हाद. वहादत की हफाजत नहीं बेकुवत बाजू,
0: वाह
2: आती नहीं कुछ काम यहाँ अकले खुदा दात. ए मर्दे खुदा तुझको कुव्वत हासिल नहीं. के मियां साहब का कलाम.
0: जी जी. अर्शाद अर्शाद अर्शाद.
2: मियां साहब अर्शाद फरमाते हैं.
0: जी जी.
2: छोट वतन नू परदेसी टुर दे, हर हर हर हर शहर वलायत, हर दसू हर मकतब पूछ दे कोई ना कहे.
0: वाह जी वाह.
2: बोते लोग वलायत फिर बस जद थोड़ा,
0: वाह
2: बोते रूम शहर विच आगे ए किसे दी लोड़े, तोहफे हदिये ले नजराने, दस्तां नादर,
0: वाह
2: इस नगरी दे वाली ताई मेरा हसन अकाबर,
0: वाह
2: मजलस बैन लगा उस शादी,
0: वाह जी वाह.
2: दे सुखन उलावे,
0: वाह वाह.
2: बहुत पसंद उनानु आया, आ कोल बहावे,
0: वाह वाह वाह.
2: आप फरियाद साहब की अहलिया या जितने रुए जमीन अंदर लोग बीमार हैं.
0: जी जी.
2: अय्यूब अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी का सदका, अल्लाह सबको से तंदुरुस्ती उम्र खिजर अता फरमाए.
0: आमीन.
2: घरों में आबाद व शाद कर दे.
0: आमीन.
2: फरियाद साहब की तरह लोग के लोगों के दिल परेशान है.
0: जी.
2: बाहर अता फरमाए. शुक्रिया.
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह खैर. ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम एम खान जी और बड़ा अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, आप आए और बड़ा ही अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और इन्होंने सबकी तारीफ भी की है और अपने अंदाज से तारीफ़ की है और बड़ी खूबसूरत तारीफ भी करते हैं. माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है. माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी कि आए और इन्होंने तारीफ भी की है और अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत बयानी भी करते हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे बहुत ही खूबसूरत भाई हैं और जितनी उनकी मैं तारीफ़ करूँ कम है. और ये हैं हमारे मुर्शिद हैं और मुर्शिद की हमेशा ही तारीफ़ करते हैं और आज भी हम तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये हमारे शकील साहब हैं. क्या कहने السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیسی طبیعت ہے میرے بھائی کی؟
3: اللہ کی مہربانی, شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں, سب ٹھیک ہے.
0: اللہ پاک کا شکر, شکر کرم کرم مولانا کرم ہے. اور آپ آ گئے ہیں اور آپ کی ماشاء اللہ بڑی ہی تعریف کرتے ہیں سب ماشاء اللہ جو بھی آتے ہیں. اور جو آپ نے پچھلے پروگرام میں خوبصورت بیانی کی ہیں, بڑی خوبصورت شاعری بھی کی ہے, انہوں نے پسند بھی کیا, سب نے فیڈ بیک بڑی خوبصورت آئی ہے, ماشاء اللہ بڑا چلا گیا.
3: بس بہت بہت شکریہ سب کا میرے طرف سے.
0: جی
3: بس کوشش کرتا ہوں ایسی چیز ہو تھوڑی سی.
0: نہیں نہیں, آپ کی تو کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ اچھی کرتے ہیں, ہمیشہ ہی اچھی کرتے ہیں. جی جو آپ کے پاس خزانہ ہے نا, وہ آپ بڑا ہی خزانہ ہے آپ کے پاس ماشاء اللہ, بڑا ہی خوبصورت خزانہ ہے.
3: بس جی آپ کی جو ہے مہربانی ہے, آپ کی وجہ سے ہے. تو اگر سننے والے نہ ہوں تو پھر کہنے والا کیا فائدہ.
0: ہاں یہ تو خوبصورت بات آپ نے کی, واقعی صحیح ہے. کیا کہنے کیا کہنے, بات بات جو آپ نے کہی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 200% رائٹ.
3: سننے والے کا من.
0: جی جی واقعی واقعی آپ کو سننے والے اتنا پسند کرتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ. سب کو جو بھی آتے ہیں ماشاء اللہ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں, وہ فردن فردن سب کا نام لیتے ہیں ماشاء اللہ, اوزلا افزائی کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے ماشاء اللہ.
3: بازار کی رونق جو ہوتی ہے وہ گاہک سے ہوتی ہے.
0: واہ کیا کہنے, بڑی خوبصورت, واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ.
3: تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ہمارے خان صاحب آئے تھے ابھی, ان کو بھی جاوید میر صاحب ہے,
0: جی جی
3: جیت بھائی, ڈاکٹر ملک صاحب ہے, چودھری رخسار صاحب ہے,
0: جی
3: چودھری مظفر صاحب, طارق زلفی صاحب ہے, چودھری فریاد صاحب,
0: جی
3: کتن بھائی ہیں, چودھری نیف ہیں, ہیرا
0: جی
3: خان رائے, اطر حسین صاحب ہیں,
0: جی
3: عیشا,
0: جی
3: عادل سیل اختر ہے, عبدالقیوم صاحب ہے, ندیم بھائی, نعیم منصور صاحب, سجاد بھائی ہیں,
0: جی
3: ستارہ صاحبہ ہماری بہنیں ہیں,
0: جی
3: ٹیکا جی آئی تھی, ماشاء اللہ بڑی اچھی کرو ان کی پوئٹری ہوتی,
0: بڑی خوبصورت پوئٹری کرتی ہیں. جی
3: سمترا بہن ہیں, غزالہ صاحبہ, رخسارہ صاحبہ,
0: جی
3: کلثوم صاحبہ ہیں, شاہپوری,
0: جی
3: اور بھی جتنے سننے والے ہیں سب کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: تو یہ غزل ہے ایک شایان قریشی ہیں لکھنے والے.
0: شایان قریشی, جی جی ارشاد
3: آپ کرتے ہیں.
0: جی جی
3: زمانہ یاد رکھے گا تمہیں یہ کام کر جانا.
0: واجب کیا کہنے.
3: زمانہ یاد رکھے گا تمہیں یہ کام کر جانا, افسردہ چہرے پر خوشی کے رنگ بھر جانا.
0: بہت خوب بہت خوب بہت خوب.
3: کسی بھی حادثے پر اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی, اسی حالت کو کہتے ہیں احساس مر جانا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ کیا کہنے.
3: اگر جانا ضروری ہے تو تھوڑا سا مسکرا بھی دے. اگر جانا ضروری ہے تو تھوڑا سا مسکرا بھی دے, مجھے اچھا نہیں لگتا تیرا با چشم تر جانا.
0: ہائے ہائے ہائے واہ جی واہ کیا کہنے.
3: ابھی بھی وقت ہے باقی تڑپ پیدا کر ورنہ, ابھی بھی وقت ہے باقی تڑپ پیدا کر ورنہ, قیامت کی نشانی ہے دعاؤں سے اثر جانا.
0: آئے ہاں ہاں کیا کہنے, بہت خوب بہت خوب.
3: شہادت کی جبیں پر آج بھی روشن ہے وہ لمحہ.
0: واہ.
3: شہادت کی جبیں پر آج بھی روشن ہے وہ لمحہ, طاعت جس میں تھا شبیر کا سجدے میں مر جانا.
0: آئے ہائے ہائے ہائے.
3: کے دیپک منتظر ہیں دل کی راہوں کے, میری آوارگی لازم ہے میرا اب گھر جانا.
0: واہ جی واہ بہت خوب بہت خوب.
3: یہ شعر کہتے ہیں.
0: جی جی ارشاد.
3: انا کو بیچنا شایان ذلت کی نشانی ہے. انا کو
0: بیچنا
3: شایان ذلت کی نشانی ہے.
0: واہ.
3: نہ کو بیچنے سے تو کہیں بہتر ہے مر جانا.
0: مر جانا ہے مکرر. جی مکرر بہت خوبصورت. واہ.
3: انا کو بیچنا شایان ذلت کی نشانی ہے, انا کو بیچنے سے تو کہیں بہتر ہے مر جانا.
0: واہ واہ کیا کہنے.
3: ایک داؤد نصیب ہے ان کی غزل ہے.
0: جی جی جی ارشاد ارشاد.
3: تو کہتے ہیں وہ تھے اپنے تو ہر ایک دور رہا ہو کر اپنا, وہ تھے اپنے تو ہر ایک دور رہا ہو کر اپنا.
0: واہ.
3: अब ना तकदीर ना किस्मत ना मुकद्दर अपना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
3: चमन अपना है, गुल अपने हैं, बहार अपने
0: हैं। आहा, क्या कहने।
3: चमन अपना है, गुल अपने हैं,
0: बहार अपने,
3: ये अलग बात के हक है ना किसी पर अपना।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
3: कभी गिरताब था मौज अपनी थी, गोहर अपना, अब नदी अपनी न दरिया न समंदर अपना।
0: वाह वाह, क्या कहने।
3: न सकूं भीड़ में दिल को न अकेले में करार, न सकूं भीड़ में दिल को न अकेले में करार, क्या खबर चाहता क्या है दिले मुसर अपना।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
3: क्यों तड़प उठते न लोगों के तड़प उठने पर, क्यों तड़प उठते न लोगों के तड़प उठने पर, वक्त के दिल की तरह दिल नहीं पत्थर अपना।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
3: आपका हुस्न सलामत है, आईना खराब है। आपका हुस्न सलामत है, आईना खराब है, आप शर्मिंदा ना हो देख के मंजर अपना।
0: बहुत खूब बहुत खूब, कमाल कर दिए, वाह वाह।
3: वक्त करता रहा तदबीर बराबर अपनी।
0: वाह।
3: वक्त करता रहा तदबीर बराबर अपनी, काम करती रही तकदीर बराबर अपनी।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
3: प्रिया तो आखिरी शेर करते हैं।
0: जी जी। अच्छा,
3: सुरख रू क्यों ना गुलिस्तान नजर आएगा नसीब, सुरख रू क्यों ना गुलिस्तान नजर आएगा नसीब, जज्ब है खून हर एक फूल के अंदर अपना।
0: हाय हाय हाय, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
3: थी तो बड़ी
0: ही खूबसूरत है, कमाल कर दिया। और हमेशा मैं कहूँ और आज भी कहूँगा, महफिल आपने लूट लिए, बड़ी खूबसूरत अंदाज आपका, बड़ा प्यारा अंदाज है। और हमारे प्यारी बहना हैं रेखा जी हैं, वो फ्लश कर रही हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं। और हमारे मिस्टर मिसेज पटेल हैं जो वोस्टल से बर्मिंगहम से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो वो भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वाह जी वाह, कमाल कर दिए, कमाल हो गया जी, वाह जी वाह। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमने सबको रिक्वेस्ट करना है कि आपने हमने हमारे लिए दुआएं करनी है। हमारे मोहतरम हैं उनके लिए दुआ करें, हमारी पापी जान हॉस्पिटल में हैं, और हमारे चौधरी फरियाज साहब की मिसिज हैं वो हॉस्पिटल में, उनके लिए खसूसन दुआ करनी है। और हमारे नदीम मंसूर साहब हैं, उनके लिए खसूसन दुआ करनी है, और उनका भी थोड़ा मसला हो गया, तो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। और पापा शफीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। यहाँ छोटे से ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे मोहतरम में, हमारे दिल अजीज़ हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच।
1: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
0: Sunrise and music. राइट, वेलकम बैक लिखने, यो लिखने सुनराज रेडियो। और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
5: मैं ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा।
5: अल्लाह आपको सलामत रखे।
0: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।
5: और सर जी आप ठीक ठाक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हम बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आपको पता है आज फुटबॉल विन हुआ, क्रिकेट फुटबॉल विन हुआ आज आज, और इंग्लैंड ने आज जीत हासिल की है, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी।
5: बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात,
0: बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात जी।
5: मैंने तो सारा मैच देखा,
0: मैंने खुद देखा है आज, मैंने खुद मैच देखा है, बड़ा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया।
5: बाग हो गया।
0: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने
5: जी। हाँ जी, तो आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
5: मीठा है मेरे मोहम्मद।

0: मोहम्मद का नाम, सभी से जुदा जिसका अंदाज है,
1: वाह
0: फलक था जमी जिसकी परवाज है,
1: वाह जी वाह क्या कहने,
0: वही जिन पे हमको नाज है,
1: आहा
0: वही जिन पे तमाम सनराइज रेडियो को नाज है,
1: आहा हा क्या कहने,
0: परवेज जी आप ही की तो वो आवाज है,
1: आहा क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और ये फरमाइश करने वाले हैं
1: जी जी
0: परवेज खान आप।

वाले यहाँ मेरी बेखुदी ने कई ख्वाब देख डाले।

0: अब देख डाले यहाँ मेरे बेखुदी ने, कहीं बे ख्याल हो कर मुझे छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले। अरे मुझ पे नाज वालो ये नाज मंदियाँ क्यों, अरे मुझ पे नाज वालो ये नाज मंदियाँ क्यों, रहा यही करम तुम्हारा मुझे तुम न दोगे जीने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरे बेखुदी ने, कहीं बेख्याल हो कर मुझे छू लिया किसी ने, मुझे छू लिया किसी ने, लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर लें, तुम जो कह दो तो सितम ये भी गवारा कर लें, लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर लें, तुम जो कह दो तो सितम ये भी गवारा कर लें, लोग कहते हैं
1: वाह क्या कहने,
0: तुमने जिस हाल

के वही हाल दोबारा कर ले, तुम जो कह दो तो सितम ये भी गवारा कर ले। लोग कहते हैं आखिरी बार कलेजे से लगा लूं तुमको, आखिरी बार कलेजे से लगा लूं तुमको, आखिरी बार ख्यालों में बसा लूं तुमको, और फिर अपने तड़पने का नजारा कर लें। तुम जो कह दो तो सितम ये भी गवारा कर लें। लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर लें। हम्म।

0: कहते हैं। ओके सर जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हो बाहर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
0: छोटे भाई
1: बहुत लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट वाज मोहम्मद रफी फ्रॉम, अल्लाह हाफिज। वाओ क्या कहने जी, दे दैट वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे देखो ये कौन आया हमारी महफल में, वेलकम कहेंगे, जी आए कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी और उसके बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 103.2 FM. बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे बड़े ही प्यारे मौजूद मेहमान हैं और बड़े प्यार करने वाले हैं, और यहाँ पे मैं इन करता हूँ उनको, और वो भी सुन लेंगे हमारी आवाज़, वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। ये हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और बड़े ही प्यारे, बिलीव करें, व्हाट अ जेंटलमैन, व्हाट अ अमेजिंग जेंटलमैन, और इज वेरी लॉयल, वेरी खूबसूरत इंसान है, बड़े प्यारे। और इनकी जो शायरी है, कमाल की शायरी करते हैं, बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं, वो कौन है, आप सब के लिए यहाँ पे सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
4: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं खान साहब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप आए और बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप इतने बिजी हैं, तो फिर भी आपने टाइम निकाला। मुझे पता है पिछले हफ्ते भी आपने कोशिश करते रहे, आप बिजी थे माशाल्लाह, हम भी बिजी थे, तो बड़ा ही अच्छा लगा कि आप आए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
4: नहीं, वो जब वक्त मिलता है तो फिर तो मैं जरूर,
1: मुझे पता है ये तो हमें,
4: मैं प्रोग्राम लगा के फिर सुन रहता हूँ, कहीं मिस हो जाता एक आधा
1: आवर। जी जी जी माशाल्लाह,
4: फिर वो दोबारा कहीं गाड़ी में हुए या इधर हुए तो लगा लिया।
1: हाँ हाँ हाँ, देखो ये आपकी इतनी खूबसूरती है, और जिस जगह पे हैं वो भी इतना खूबसूरत है, और हमें अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आप आए। और आपको
4: तो वैसे भी मौसम आपके यहाँ तो उधर गर्मी है सुना है, उस साइड
1: काफी गर्मी है यहाँ पे, और सुना है कि जो आने वाले दिन है और चंद दिनों के बाद मेरे ख्याल में यहाँ पे 40-41 होगी, जो इंशाल्लाह जुलाई में भी गर्मी होगी, ज्यादा गर्मी होगी, तो देखते हैं क्या होता है।
4: हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है जी।
1: जी जी माशाल्लाह की
4: बहुत ही जबरदस्त
1: मौसम, अच्छा ना हो वहाँ पे, सीनरी बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है।
4: जी हाँ जी, क्योंकि वो ग्रीनरी ज्यादा है, तो इसलिए फिर वो स्कॉटलैंड तो फिर ग्रीनरी की वजह से ही है,
1: ग्रीनरी की वजह से, वाकई से कोई शक नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और
4: आपका तौर पे मैं तो सारों का शुक्रगुजार हूँ, जितने भी दोस्त हैं जो सामे हैं, सुनने वाले हैं
1: जी,
4: अलोंग और अक्रॉस द प्लैनेट, यू कैन, आपके हर तरफ जा रहा है,
1: पूरी दुनिया में जा रहा है, और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे नहीं जा रहा है। जी जी जी जी जी,
4: तो मैं हमेशा से ही, मैं एक आजिज और बड़ा ही हम्बल इंसान हूँ, मैं
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह।
4: आपका बड़ा पन है कि आप मौका देते हैं।
1: नहीं नहीं, ये प्रोग्राम ही आपका,
4: हम भी अपनी आवाज आपकी आवाज में शामिल कर,
1: माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने।
4: तो बाकी तो वो यही है कि इंसान क्योंकि एक ऐसा पल है जो बीतता है तो फिर बीतता ही चला जाता है।
1: क्या कहने कि बड़ा खूबसूरत, वाह क्या कहने,
4: अगर रुक जाए तो फिर ये वो लम्हा है, जब ठहर जाए तो फिर कटता भी नहीं है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
4: ये बस इंसान के मुख्तलिफ शेड्स हैं, खूबसूरतियां हैं,
1: बातों बातों में वो कहते हैं, बड़े कमाल की बातें करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, बिलीव करें, वाओ अमेजिंग अमेजिंग, वाह क्या कहने।
4: नहीं वो कोशिश देखे, मैं यहाँ पे भी या मेरी जिंदगी का जो भी सफर रहा है,
1: जी जी जी,
4: उस सफर में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि आप किसी भी महफिल में हो, अब मैं लॉयर था तो अदालतों में भी और कोर्ट्स में भी,
1: जी जी,
4: मेरी कोशिश होती थी कि चलें यार, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए,
1: शेयर करना चाहिए, बाकी
4: और दूसरा जरूर एक ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए जिससे दोनों सुनने वाले भी और जो गुफ्तगू कर रहे हैं
1: क्या कहें,
4: दोनों तरफ से एक एक एक नॉलेज एक्सचेंज हो, एक एक ऐसी पार एक्सचेंज हो जो फिर आपको पहरों लज्जत में रखे।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त।
4: वो वाला काम नहीं करना चाहिए कि आप महफिल में गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, बारह आने
1: वाकई वाकई सही। तो वो बात है ना आपकी, जो जो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, वाह क्या बात।
4: तो मेरा वो डिस्कोर्स यही रहा है कि अगर आप किसी भी महफिल में हैं
1: वो,
4: तो आप जरूर ऐसा कुछ शेयर करें ताकि दोस्तों के साथ आपके,
1: हाँ क्योंकि महफिल का इत्राम ही होता है, आपको पता है ना कि एवरीबॉडी नोज महफिल का इत्राम होता है और उस इत्राम को चलना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी महफिल है, कैसी महफिल है, तो उसका लिहाज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। और देखो कि हमारे जो अंग्रेज लोग हैं माशाल्लाह, इवन दो दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल माशाल्लाह, उनकी जो देखो उनके खाने पीने का अंदाज होता है, जो नाइफ एंड फोक यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, दे हैव बीन ट्रेंड। वो भी एक महफिल का एक आगाज होता है।
4: देखे सादी ने कहा था एक जगह पे, शेख सादी ने,
1: जी जी,
4: आप बाजारे हुस्न में अजान नहीं दे सकते और मस्जिद में जाके गीत नहीं गा सकते।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने,
4: वो वाली बात है।
1: जी जी वाह वाह वाह वाह,
4: के इंसान कई जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, या इंसान का जो खुदा ने उसको जो अकले, जिसको
1: अकले शोर दी दी दी, जी वाह क्या कहने, क्या
4: कहने, अकले सलीम का तकाजा यही है कि आप बच्चों के साथ अगर बैठे हैं तो बच्चे बन जाएं
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
4: आप उनके लेवल पे जाएंगे तो उनकी समझ सकते।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, काश इस दुनिया में आप जैसे होते। वाह जी,
4: मैं बचपन से ही ना, मेरा कुछ ऐसा था कि मेरे दोस्त मुझसे नाला रहते थे क्योंकि मैं अपने दोस्तों के वालदैन का बड़ा फेवरेट था।
1: हाँ हाँ हाँ, क्या कहने,
4: क्योंकि वो सब अपने बुजुर्गों से भागते थे, मैं उनके पास बैठ के उनके किस्से सुना करता
1: था।
4: तो लिहाजा मैं उनका फेवरेट चाइल्ड होता था, उनके वालदैन का, और मेरे दोस्त बार कहते थे यार ये इसमें कौन सी बूढ़ी रूह है, हम भागते हैं, ये जाके बुजुर्गों के पास
1: बैठ जाते हैं,
4: वो उनके पास घंटों बैठा रहता है, उनके पूरा उनसे सुनेगा, उनका करेगा। तो वो फिर एक ऐसा ही होता है कि आप चलें जिंदगी के साथ।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बड़ी नया बात आपने की है, बड़ी अच्छी।
4: वो सारे कहेंगे कि राय साहब ने फलसफा ही झाड़ना शुरू कर दिया।
1: सर जी सर जी, कोई भी नहीं कहने वाला, कोई आप बड़ी ना करें, आप अपना जो खूबसूरत कलाम लेके आए और जो कोरा कोरा कलाम लेके आए वो सुनाएं।
4: जी जी, गजल के अपने ताजा बताजा गजल के कुछ इशार हैं
1: जी जी,
4: आप सबकी समातों की नजर हैं,
1: माशाल्लाह,
4: तमाम सुनने वालों के लिए
1: माशाल्लाह, क्या कहने।
4: और शेर देखिए कि बार को उठाने में देर कितनी लगती है,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
4: बार को उठाने में देर
1: कितनी लगती है,
4: सांस को उलझने में देर
1: कितनी लगती है, हाय हाय हाय वाह,
4: बार को उठाने में देर कितनी लगती है, सांस को उलझने में देर कितनी लगती है, सामना है मुश्किल का, वक्त है न जाने का।
1: हाय हाय हाय, बहुत खूब,
4: सामना है मुश्किल का, वक्त है न जाने का, जाके फिर न आने में देर कितनी
1: लगती है। हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह,
4: जाके फिर न आने में
1: वाह
4: देर कितनी
1: लगती है, आहा,
4: और मैं जो एक मसीहा हूँ अपने सांस गिनता हूँ,
1: हाय हाय हाय हाय हाय,
4: मैं जो एक मसीहा हूँ अपने सांस गिनता हूँ और सांस गिनने में देर कितनी लगती
1: है, हाय हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह,
4: और सांस गिनने में देर कितनी
1: लगती है,
4: और हम सफर तो होते हैं फासले भी होते हैं,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
4: हम सफर भी होते हैं फासले भी होते हैं,
1: वाह,
4: रास्ता बदलने में देर कितनी
1: लगती है, हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने,
4: सफर भी होते हैं फासले भी होते हैं, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है,
1: वाह,
4: तुम तो एक साया हो जाने कब मचल जाओ,
1: वाह क्या कहने,
4: तुम तो एक, वो आपने देखा होगा ना कि साया जो पानी में आप खड़े हो,
1: पानी में खड़ा हुआ नजर आता, हाँ जी ऐसे ही
4: कांप रहा होता,
1: कांप रहा होता,
4: पानी हिल रहा होता ना, तो वो
1: हाँ,
4: तो वो मचलना कांपना उसी को, तुम तो एक साया हो,
1: हाय हाय हाय हाय वाह,
4: जाने कब मचल जाओ, रोशनी को ढलने में देर कितनी लगती है,
1: बहुत खूबसूरत, क्या कहने, वाह
4: तुम तो एक साया हो, जाने कब मचल जाओ, रोशनी को ढलने में देर कितनी लगती है।
1: वाह,
4: मैं ख्याल आवारा और एक धड़कन को जिंदगी बचाने
1: में देर कितनी लगती है। आए हाय हाय हाय, क्या कहने मेरे भाई।
4: ख्याल आवारा और एक धड़कन को जिंदगी बचाने में देर कितनी लगती है। और आहनी मिजाजों को वक्त काट देता है।
1: आए होए होए, मुकरर मुकरर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
4: आहनी मिजाजों को वक्त काट देता है, मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है।
1: वाह क्या कहने, क्या कहने।
4: आहनी मिजाजों को वक्त काट देता है,
1: वाह,
4: मोम को पिघलने में देर कितनी
1: लगती है। वाह,
4: और हम नजर नहीं आते पास रहने वालों को।
1: हा हा हा, वाह।
4: हम नजर नहीं आते पास रहने
1: वालों को,
4: और दूर जाने में देर कितनी
1: लगती है। आय हाय हाय,
4: और दूर जाने में देर कितनी लगती है। आखिरी शेर है कि सोच की जमीनों में रास्ते जुदा अजहर।
1: वाह वाह,
4: सोच की जमीनों में रास्ते जुदा अजहर,
1: वाह,
4: मंजिलों को मिलने में देर
1: कितनी लगती है। आय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
4: तो ये
1: कमाल करते हैं, कमाल कर दिए मेरे भाई, कमाल ही कर दिए। बिलीव करने के इतना खूबसूरत अंदाज आपका, बड़ा ही प्यारा अंदाज, और क्या कहने। जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूं कम है मेरे भाई की। और
4: ये आपकी
1: नहीं नहीं, ये प्यार है आपका मेरे भाई, आप टाइम निकाल के आते हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत
4: बहुत
1: शुक्रिया,
4: और बहुत शुक्रिया
1: आपका, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे मोहतरमे अशोक कुमार साहब हैं जो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे बर्मिंघम से, तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत
4: बहुत
1: शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रब रखें, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारे मोहतरम हमारे भाई अब्दुल कय्यूम साहब हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
5: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: माशाल्लाह माशा, जितनी आपकी मैं तारीफ करूँ कम है मेरे भाई, आप आगे और छा गए।
5: आपका प्रोग्राम जो है ना वो बहुत बिजी जा रहा है, मैंने सोचा कि शायद आज मेरी बारी नहीं आएगी।
1: मेरे भाई आपकी, मैं आपके लिए पूरी रात यहाँ बैठने के तैयार हूँ माशाल्लाह। जी
5: चलो
1: जी,
5: तो सबसे पहले तमाम सुनने वालों को जो जहाँ के भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं सबको सलाम अर्ज करता हूँ।
1: जी जी,
5: तो तमाम सुनने वालों से इल्तमास करता हूँ कि हमारे भाई बुजुर्ग शायर फरियाद साहब की अहलिया हॉस्पिटल में हैं
1: जी,
5: और जो जितने भी हॉस्पिटल में सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको शिफा से तंदुरुस्ती अता फरमाए।
1: आमीन आमीन आमीन आमीन। देखो ये होती है खूबसूरती होती है, मेरे जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ये फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली शो है। देखो आपने सुना है तो आपने जिक्र किया है, देखो ये बड़ी बात है।
5: हालांकि मैंने उनको देखा भी नहीं है। वो
1: नहीं, नहीं, देखो ये देखो प्यार मोहब्बत है, मतलब
5: एक सोती रिश्ता है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। और
5: वो बहुत प्यारे इंसान हैं, और उनकी गजलें और उनका कलाम यकीन करें वो हमेशा ही बाजी ले जाते हैं। और उसके बाद
1: यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं भाई, फरियाद साहब दोबारा आ गए, और वो मैं कोई यहाँ पे मसला ये कि आवाज नहीं आ गई आपको, तो आप चलो थोड़ी देर के बाद में वो जब आएंगे ना तो वो मैं उनको बता दूंगा। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज
5: में जल्दी ये कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।
1: जी जी जी,
5: शकील आरफ की ये गजल है।
1: शकील आरफ साहब, वाजी वाह, क्या कहने
5: जी। मैं जिसको राह दिखाऊं वही मिटाए मुझे, मैं जिसको राह दिखाऊं वही मिटाए मुझे, मैं नक्श पा हूं कोई खाक से उठाए मुझे।
1: वाह वाह वाह वाह,
5: मैं जिसको राह दिखाऊं वही मिटाए मुझे, मैं नक्श पा हूं कोई खाक से उठाए मुझे, और महक उठेगी फजा मेरे तन की खुशबू से, महक उठेगी फजा मेरे तन की खुशबू से, मैं औद हूं कभी आकर कोई जलाए मुझे।
1: हाय हाय हाय हाय,
5: शुक्रिया जी। मैं औद हूं कभी आकर कोई जलाए मुझे, और चिराग हूं तो फकत ताक क्यों मुकद्दर हो, चिराग हूं चिराग हूँ तो फकत ता क्यों मुकद्दर हो, कोई जमाने के दरिया में बहाए मुझे, चिराग हूँ तो कोई फकत क्यों मुकद्दर हो, कोई जमाने के दरिया में भी बहाए मुझे। और शेर है, मुश्ते खाक हूँ सरा मेरी तमन्ना है, मैं मुश्ते खाक हूँ सहरा मेरी तमन्ना है,
6: हवाए
5: तेज किसी तौर से उड़ाए उड़ाए मुझे, और अगर मेरा है तो उतरे कभी मेरे घर में।
6: हाँ हाँ हाँ हाँ, क्या कहने,
5: अगर मेरा है तो उतरे कभी मेरे घर में, वो चांद बन के न यूं दूर से लभाए मुझे।
6: वाह वाह वाह वाह वाह।
5: अगर मेरा है तो उतरे कभी मेरे घर में, वो चांद बन के न यूं दूर से लभाए मुझे, और वो आईने की तरह मेरे सामने आए, मैं नहीं तो मेरा अक्स ही दिखाए मुझे।
6: वाह वाह वाह।
5: अगला शेर है, उमड़ती यादों के आशोब में मैं वाकिफ हूँ, उमड़ती यादों के आशोब से मैं वाकिफ हूँ, खुदा करे किसी सूरत वो भूल जाए मुझे।
6: हाय हाय हाय हाय।
5: और शेर है, वफा निगाह की तालब है इम्तिहान की नहीं, वफा निगाह की तालब है इम्तिहान की नहीं, वो मेरी रूह में जाके न आजमाए मुझे।
6: वाह वाह वाह वाह।
5: वफा की निगाह तालब है इम्तिहान की नहीं, वो मेरी रूह में जाके न आजमाए मुझे। और आखिरी शेर है, ये आरजू है कि आरफ गजल में ढल जाऊं, उदास लम्हे में वो शायद गुनगुनाए मुझे।
6: आए,
5: बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने रेडियो को सुनेंगे तो हमारे चौधरी फियाज साहब आपको वो थोड़ी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे मोहतरम भाई अब्दुल कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ भी हमने करना है, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम चेक करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया साहब दोस्तों का। महबूब लाइक साहब आप भी कोशिश करने फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी एफ रहमान साहब आप भी फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक।
7: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: Right, the time in the studio is gonna be 43 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on. Keep it locked on with Parviz Khan. Yeah, I'm sure you'll be breaking it. Keep it locked. Sunrise
2: Music. Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
8: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
9: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
8: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
9: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ, ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
8: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
9: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕ ਲੇਨ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 488 935.
10: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
1: Right, welcome back. Listen, you're listening to the radio. And here we have our brother, our mother, our brother, Mehboob Lai Sahib, our brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji Hazur. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम जी, आना खुश आमदीद मेरे भाई। किधर गायब हो गए?
11: कभी लाइन नहीं मिलती, कभी कभी वैसे मसरूफ होते हैं
1: ये रोला, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। आप आ गए और बहार आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे अच्छा लगा। और काफ़ी दोस्तों ने आपके लिए आल वाल पूछ रहे हैं, अब आपने उन्होंने आपको मिस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फर्दन फर्दन सबके नाम लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
11: सभी का बहुत शुक्रिया
1: जी।
11: और हम शायरी लेके आए हैं, और सर भाई फरियाद साहब की मिसेज के बारे में सुना, अल्लाह ताला उन्हें शफा दे।
1: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।
11: तो शायरी का नाम करना चाहेंगे, चौधरी मुजफ्फर हैं, चौधरी फरियाद, चौधरी रखसार हैं
1: जी,
11: नवीद भाई हैं, अतीका जी, और जितने भी हमीदा जी हैं, और जितने भी सामीन के भाई अमीर साहब, सभी के नाम
1: जी जी।
11: पता होता है टाइम थोड़ा होता है तो
1: जल्दी,
11: तो मैं कह देता हूँ जो लिस्ट अभी के है पास है सभी के नाम
1: जी जी। बहुत शुक्रिया
11: जी। शायर लिखता है
1: जी जी, अच्छा।
11: कोई ऐसा पल भी हुआ करे, ऐसा पल भी हुआ करे, मैं कहूँ सो सुना करे,
1: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह।
11: ऐसा पल भी हुआ करे, कहूँ बस सुना करे,
1: वाह क्या कहने,
11: फुर्सतें मेरे मशगले, फुर्सतें मेरे मशगले काम किया करे।
6: वाह क्या कहने।
11: फुर्सतें मेरे मशगले सभी अपने नाम किया करे, रात हो किसी शाम की, रात हो किसी शाम की, कोई जिक्र हो किसी रात का, रात हो किसी शाम की, कोई जिक्र हो किसी रात का, आने बैठूं उसे कभी, आने बैठूं उसे कभी, वो हंसने वो सुने तो सुनकर हंसा करे।
6: वाह क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
11: नाने बैठूं उसे कभी, सुने तो सुनकर हंसा करे। मैं कहूँ चलो इस नगर, कहूँ चलो इस नगर जहाँ जुगनुओं का हजूम हो, कहूँ चलो इस नगर जहाँ जुगनुओं का हजूम हो, पलट कर देखे मेरी तरफ।
6: वाह जी वाह क्या कहने।
11: पलट कर देखे मेरी तरफ, मुझको को पागल कहा करे।
6: वाह जी वाह क्या कहने।
11: पलट कर देखे मेरी तरफ और मुझको पागल कहा करे, सफल भी हुआ करे, कहूँ तो बस वो सुना करे।
6: हाय हाय हाय हाय कमाल कमाल।
11: सफल भी हुआ करे, मैं कहूँ तो बस वो सुना करे।
6: वाह।
11: फुर्सतें मेरे मशगले अपने नाम किया करे।
6: हाय हाय हाय हाय हाय। वाह।
11: फुर्सतें मेरे मशगले भी अपने नाम
6: आई हाय हाय हाय कमाल कर दिया कमाल कमाल। वाह जी वाह कमाल कर, बहुत खूबसूरत शायरी, बड़ी कमाल की और खूबसूरत शायरी करते हैं आप, और बहुत शुक्रिया आपके, आपने हाजिरी लगाई है और हम आपका इंतजार करेंगे संडे के रोज़। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और दिल गार्डन गार्डन और दिल बाग बाग हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त और महबूब लाइफ का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया। और फर्दन फर्दन ये मुझे कहते रहते हैं कि यार हमें लाइन नहीं मिल रही है, ये हो गया वो हो गया, तो अच्छा लगता है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वो प्रोग्राम पसंद करते हैं, इन्जॉय करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका भी। एफ रहमान साहब हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं, वो भी माशाल्लाह आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके भी साथ हम कलाम होंगे, क्योंकि अजान पेश करनी है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिलीव करें कि हमेशा मैं कहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं टाइम के साथ अजान पेश करूं, और जो भी काम होता है यहां पे सब टू द पॉइंट, टू द डॉट। और मैं नहीं कहता कि मुझे कोई कहे कि यार आपने ये किया वो किया, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और क्योंकि यहां पे मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज़ जो ना वो टाइम के साथ पेश किया जाए, और करनी भी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। और यहां पे आप बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ आपने अजान सुननी है, वो भी ईशा की अजान होगी यहां पे ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर में माशाल्लाह। और हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए दुआ करनी है, और स्पेशली आपने दुआ करनी है जो हमारे बाबी जान हैं वो हॉस्पिटल में हैं, हमारे चौधरी फरियाज साहब की मिसिज़ हैं वो हॉस्पिटल में हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल में दुआ करनी है। हमारे मोहतरम नदीम मंसूर साहब हैं, उनके घर में थोड़ा सा मसला हो गया, उनके लिए हॉस्पिटल दुआ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी बीमार हैं उनके लिए दुआ करनी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिन्होंने दुआएँ की हैं हमारे चौधरी फरियाज साहब की मिसिज़ के लिए, जो हमारे बाबी जान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये होता है, मोहब्बत की बात होती है, प्यार की बात होती है। और यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब हमारी फैमिली हो, और फैमिली हो हमेशा ही मैं कहता हूँ। और आपने आज जो ना, वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिस्टनर, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। मैं शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने शिक्र किया, प्रोग्राम में हिस्सा डाला है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिनके लाइन नहीं मिली है, आई डू अपोलोजाइज। पापा ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी कोशिश की है फ़ोन करने की। एफ रहमान साहब, आपने भी कोशिश की है। साजिद साहब फ्राम शफीक से, साजिद फ्राम ग्लासगो से, उन्होंने कोशिश की है। समी जी, आपसे भी मदद चाह रहा हूँ कि काफ़ी दोस्तों की लाइन मिस हो चुकी है, आई डू अपोलोजाइज क्योंकि टाइम की वजह से। तो यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम में यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू, चौधरी फरियाद साहब हैं। जी बिस्मिल्लाह।
1: जी
0: बिस्मिल्लाह करा, वालेकुम सलाम। जी फरा जी, पापे तुसानी शामिल हैं, दुखी शामिल हैं, तो साड़ी पापी जान हॉस्पिटल में, तो सब दोस्तों जो भी बहन भाई आए हैं जिन्होंने शिरकत की प्रोग्राम में, उन्होंने आपके लिए खसूसन दुआ की है, हमारी पापी जान के लिए दुआ की है हवा के दोष में।
1: बिस्मिल्लाह परवेज भाई, मैं सारिया वास्ते बिस्मिल्लाह करना
0: जी,
1: और मैं सारिया बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्हें मेरे घर वाले वास्ते दुआ की है
0: जी।
1: ते अगर टाइम होना तो मैं सारिया ना फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करा
0: जी,
1: पर एक बारे सारिया ना बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: मेरे को अल्फाज नहीं है जिस तरह मैं तुसा ना शुक्रिया अदा करा।
0: आमीन,
1: माशाल्लाह। खलूस ना तुसा ने इन दुआ ना बहुत बहुत शुक्रिया।
0: कल सुबह जो इंशाल्लाह खुशखबरी ऐसी, माशाल्लाह इंशाल्लाह तो ठीक ठाक हो जाए, कोई वरी करने की बात नहीं।
1: अज रहीम साहब भी आने से थोड़ी देर पहले उन्होंने गल कह रहे यार, मैं कोई अज सुनी ना सकिया, मैं आया चलो हम दुआ करो मारी लेन लगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करे। जी जी जी
1: जी, बिस्मिल्लाह करा आखने ने कि असा ते भुलना नहीं उस नु, असा ते भुलना नहीं उस नु, विच जीदियां सजा वफा रहसी। बंदा है मस्कीन प्यार वाला, बंदा है मस्कीन प्यार वाला, फर्ज अपना करदा अदा रहसी।
0: वाह जी वाह,
1: लाजवा है मर्ज पर विच दुनिया, सजा रब दा इस दी दवार ऐसी, मेरे प्यार दे आके कबीर सागर, ओ परदे रखदा मेरा खुदार ऐसी।
0: वाह क्या कहने,
1: आके आके रूबरू दस का बेदर्दा, ऐद करके ऐद पलाया किसने, कौन मुखरिया कोल करारा उतो, डेरा रावण विच जमाया किसने।
0: वाह जी वाह क्या कहने, बहुत खूब।
1: कौन बह उडीका विच यार मेरे, हाल जोगिया वांग बनाया किसने, कौन वस्ता रकीबा विच रे आसदा, कोई सजा रो रो दर्द सनाया किसने।
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: किस तांग विच जान जला अपने, किस सबर जालम अजमाया किसने, बेरुखिया ने वार कबीर कर कर दिल तोड़ के किस तरह रुलाया किसने।
0: वाह क्या कहने, बहुत खूब।
1: फिर आखने के पल विच नजरा बदल लेंदे,
0: वाह
1: पल विच नजरा बदल लेंदे, नाजा वालियां दे अजब ख्याल वेखे, ज़ाहिरी जिसके नाजिक ने फुल कोलो तो कर दे जुलम जलाद मिसाल वेखे।
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: ज़ाहिरी जिसके ज़ाहिरी जिसके ने नाजिक, ज़ाहिरी जिसके नाजिक ने फुल कोलो कर दे जुलम जलाद मिसाल वेखे, कैदी उन्हां दे हो गए प्यार अंदर, कैदी उन्हां दे हो गए
0: प्यार अंदर,
1: मंदा दे जिन्हां जमाल वेखे, संग नैना कर लेंदे शिकार चीसी अजब तरह दे सोने कताल वेखे।
0: वाह जी वाह क्या कहने क्या कहने,
1: अखिया चंगी प्यार नाल गुजर रही सी, चंगी प्यार नाल गुजर गुजर रही सी, गम इज्जत दे कारण डाल गए नी, फूल लंघदे हुण ते बुलांदे नी, बदल सजना दे ऐसे ख्याल गए नी।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वादा आंदा करके कई वारी, फिर नाल बहानिया टाल गए नी, होया वसल मनीर ना उम्र सारे, इंतजार विच गुजर कई साल गए।
0: आ हा हा क्या कहने,
1: एक अली हमजाना एक उर्दू ना शेर
0: जी जी,
1: इखने ने के वाकया एक दरपेश आया, वाकया एक दरपेश आया, एक यार था यारो बनाया हमने।
0: वाह वाह वाह,
1: वाकया एक दरपेश आया, एक यार था यारा यारो बनाया हमने, उसके दिल की हर चाहत पूरी की, उसके दिल की हर चाहत पूरी की, उसका हर था नाज उठाया हमने।
0: हाय हाय हाय,
1: करने लगा फिर जाहिर वो जात अपने करने लगा फिर जाहिर वो जात अपने होते देखा फिर उसे पराया हमने निकला सांप अफसीन का अली हमजा खून जिगर का जिसे पलाया हमने।
0: हाय हाय हाय हाय चौधरी साहब मन गया, थैंक यू वेरी मच, आप आए और बहार आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं और इसीलिए सब आपके दीवाने मेरे भाई, सब आपके चाहने वाले हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आपके साथ हम कलाम होंगे संडे की शाम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत
1: बहुत शुक्रिया,
0: जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, अनशब खैर।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 11, England captain Harry Kane saved his team from a shock World Cup exit as they came from behind to beat DR Congo 2-1 in the last 16. Kane scored twice in Atlanta with Anthony Gordon coming off the bench to set up both goals. He says he was glad to make an impact.
4: I felt like when I come on, they were tired, so I tried to make the most of it. Usually in that situation, I'd probably try and shoot or do a bit of a skill, but I think with H, he probably dictates my decision. I just thought, try and put it in there. I know he's in there somewhere. And he was.
3: Thomas Tuchel's side will play co-host Mexico next. A man's been found guilty of the attempted murder of three children in Dublin in 2023. It's an attack which sparked widespread disorder in the Irish capital. An 18-year-old drowned on a Duke of Edinburgh expedition in Powys. Trip organisers say they're working with authorities to understand what happened. The Defence Secretary says he's absolutely assured Andy Burnham will stump up the cash for increased armed forces spending. Dan Jarvis has been speaking about a £4.7 billion funding gap in yesterday's investment plan. The Conservative leader has accused Sir Keir Starmer of a dereliction of duty, but the outgoing Prime Minister says the Tories also left decisions about funding for the next budget when they were in power.
5: Let's drop the faux outrage, focus on what matters, the biggest sustained increase for 40 years, the biggest increase for 45 years, providing what is needed to keep the country safe.
3: Police say a three-year-old boy who ended up in a crocodile enclosure at a zoo in Cambridgeshire say faces a long road to recovery. His parents have thanked the keepers who rescued him, as well as those caring for him in hospital. And finally, last month was England's hottest June on record. The average temperature of 17.1 degrees Celsius beat the 16.9 set last year. For the UK as a whole and for Wales, it was the second warmest. That's the latest. I'm Chris Milligan.